होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, यूक्रेन के

0: चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आपण ऐकत आहात आकाशवाणी धाराशिव केंद्राचे कार्यक्रम। सकाळचे ठीक 6:05 झाली आहेत। आता ऐकूयात मंगल प्रभात हा भक्ती संगीताचा कार्यक्रम।

अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान।

श्रोताओं, हमारे जीवन से जुड़ी अनेकों विषयों को प्रतिबिंबित करता कार्यक्रम दर्पण जरूर सुनिएगा हर शुक्रवार प्रातः ठीक 10 बजे हमारे अपने आकाशवाणी के धाराशिव केंद्र से। कार्यक्रम दर्पण दर्पण दर्पण दर्पण।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान

0: के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
1: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
2: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
3: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
5: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय

0: प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान नक्सलियों की फंडिंग पर

0: लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
5: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
6: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की

0: सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बँडच्या 101.3 मेगाहर्ट्झवर आणि प्रसार भारतीच्या न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी धाराशिव केंद्राचे कार्यक्रम। सकाळचे ठीक 8:15 झाली आहेत। श्रोते हो, प्रसारित करत आहोत लखलख चंदेरी हा हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला ऐकूयात दिल का रिश्ता या चित्रपटासाठी अलका याज्ञिक आणि उदित नारायण यांनी गायलेलं, नदीम श्रवण यांनी संगीत दिलेलं, समीर यांचं गीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है संगीतकार दान सिंह की पुण्यतिथि। उन्हीं को याद करते हुए आज की फनकार कार्यक्रम उन्हीं पर केंद्रित रहेगा। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को पुनः आप रात को 9:30 पर सुन सकते हैं और अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह की 9:30 पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रित रहेगा संगीतकार दान सिंह पर। और आइए

0: खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
5: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।

इस ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। श्रोताओं, आपको बता दें, आज है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे, यानी सेलिब्रेटिंग फूड हेरिटेज 2026 की थीम है इस डे के लिए। ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। भोजन विरासत का जश्न है इसका अर्थ है। इसका उद्देश्य पारंपरिक खाद्य ज्ञान, स्थानीय सामग्री और पर्यावरण अनुकूल खान पान को बढ़ावा देना है। सतत खान पान का मतलब है ऐसा भोजन चुनना जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि भोजन कहाँ और कैसे उगाया जाता है तथा हमारी थाली तक कैसे पहुँचता है। इसका महत्व ऐसा है कि हमें ध्यान देना होगा प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा की बचत की, और स्थानीय किसानों को समर्थन देना, यानी कि उन्हीं से मौसमी सब्जियां और फल खरीदना।

जिनकी बर्बादी में कमी हो ये भी हमारी जिम्मेदारी है। पारंपरिक और क्षेत्रीय खाद्य संस्कृति का संरक्षण ये भी तो हमारा कर्तव्य है। वैसे क्या करना चाहिए? स्थानीय और मौसमी फल सब्जियां ही खाना चाहिए और उन्हें किसानों से ही खरीदना चाहिए। भोजन की बर्बादी को बिल्कुल ना करें। दालें, बीन्स और हरी सब्जियां अधिक खाएं। जैविक कचरे से खाद यानी कंपोस्ट बनाएं। प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले इस्तेमाल करें। इस दिवस का संदेश है कि छोटे छोटे टिकाऊ खाद्य विकल्प अपनाकर हम स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण में योगदान दे सकें। और सुनिए ये गीत जावेद अली और सुनिधि चौहान की आवाज में, दावते इश्क फिल्म से। कौसर मुनीर के शब्द, साजिद वाजिद का संगीत।

0: जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, Who is he?
1: कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का गीत अलका याग्निक, सोनू निगम और करीना कपूर की आवाजों में समीर का लिखा गीत है। धुन बनाई है संदेश सांडिल्य ने।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

फिल्म मोहब्बते से ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उद्भव और कुछ साथी कलाकारों की आवाज़ों में, जिसमें शाहरुख खान, उदित नारायण, मनोहर शेट्टी, प्रथा मजूमदार और साथियों के स्वर थे, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। डीजे आ गया, आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारायणिया को नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की

के जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दांस

डांसिंग का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांसिंग के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। डांसिंग खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दान सिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

0: चुराया है।
1: यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964 मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: एफएम बँडच्या 101.3 मेगाहर्ट्झवर आणि प्रसार भारतीच्या न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर आपण ऐकत आहात आकाशवाणी धाराशिव केंद्राचे कार्यक्रम। सकाळचे ठीक 10 आहेत। श्रोतेहो, प्रसारित करत आहोत मिश्र संगीत हा कार्यक्रम। कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आर्यन पराडकर यांनी गायलेलं मधुकर जोशी यांचं भक्तिगीत, या गीताला संगीत दिलं आहे विठ्ठल शिंदे यांनी।

0: आणि नवनवीन साड्यांचा खजिना।
1: या अधिक महिन्यात आपल्या लेकी जावयाला द्या आनंदाची खास भेट।
2: प्रियदर्शनीचे यू पोलीस लोखंड गल्ली बारशी फॅशन विश्वास आणि आपुलकी।
3: पता है न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
4: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
3: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
4: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
3: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: मिश्र संगीत हा कार्यक्रम आपण ऐकत आहात आकाशवाणीच्या धाराशिव केंद्रावरून। कार्यक्रमात यानंतर ऐकूया

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर बस कुछ ही पलों में।

तो प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार जी। तो बताइए श्रोताओं, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है जिंदगी का सफर? अच्छा चल रहा है ना? आहा, कभी कभी नाव हिचको लिखा जाती है ना? कोई बात नहीं, यही तो जिंदगी का असली सफर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफर कैसा होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप यही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि सफर तनाव मुक्त होना चाहिए, रोमांचक होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और साथ में एक प्यारा सा हम सफर भी होना चाहिए ताकि जिंदगी बहुत मजे से निकल जाए, क्यों है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर, क्योंकि इधर हम हैं और उधर आप, और मिलकर ये प्यारा सा सफर हम आज तय करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं समुद्री यात्रा पर। नौका विहार करते हैं? डरिए नहीं, डरिए नहीं भाई, आज के समय में भी समुद्री यात्रा खास तौर से आज के समय में काफी सुरक्षित और आसान हो गई है और ये यात्रा करना बहुत रोमांचक हो जाता है। एक शानदार अनुभव हमारी जिंदगी से जुड़ जाता है। नीला पानी, ताजी हवा और प्रकृति की विशालता का एहसास होता है हमें। बस थोड़ा सा मानसिक रूप से हमें मजबूत होना पड़ता है। तो चलिए हो जाते हैं तैयार और चलते हैं आज नौका विहार पर, है ना? तो आप हमारा इशारा समझ गए हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमने वही गीत चुने हैं जो नावों पर फिल्माए गए हैं और इन गीतों में मुख्य रूप से रोमांस, आशा या अपने प्यार की तलाश जैसा भाव छुपा है। तो जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो अपने विचार लिख दिए हैं और खुशी की बात यह है कि आज बहुत सारे गीत आपकी पसंद और हमारी पसंद के मेल खा रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार में शामिल होना चाहते हैं, वो www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर अपनी बात हमें लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नौका विहार।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था उड़न खटोला। तो भाई आज तो इस नौका यात्रा पर हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हो गए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी नाव लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़ गए हैं। तो चलिए इस नौका यात्रा पर जब हम निकल ही गए हैं तो डरना कैसा है ना भाई। ध्यान से रहिएगा, डरिएगा नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका अच्छे से तय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है यानी मैंने जो इबारत लिखी है दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है जिसे व्यात्मक और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियां, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव डगमगाने लगती है तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी मांझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके।

हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये बताता है कि जिंदगी के सफर में हम ताउम्र भंवर यानी मझदार में खुद को फंसावा पाते हैं। जीवन रूपी सफर में जब कोई किनारा नजर न आए तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू तो पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सकें, इसलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप

हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा और एक शब्द नैया जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं, जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा, तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं? हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है, तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का वो वर्णन आप कर सकते हैं कम से कम शब्दों में, आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्माए गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नज़र में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है और शिकारा की जो धीमी गति है और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो हैं कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला से एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद, और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर, आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की। ये फिल्म है सवेरा, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार हैं शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

तो ये था फिल्म सवेरा का गाना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत यानी ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत जाए तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास साहस धैर्य सत्कर्म सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संग जीवन भवसागर पार लगाने की महात्मय पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी ये सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नए रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हाँ, हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा ले रहा है। इस बार हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतजार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुंचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी नैया पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम आनंद ले ही रहे हैं, है ना।

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहां गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे एक श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार का आनंद लिया, जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पत्नी और बेटी के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो ये है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए सर आंखों पर। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मझदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामें और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लग ही जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आप

0: हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पाकिजा का चलो दिलदार चलो तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा और जिस गली में तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौकामय संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है। इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों के बीच सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय हैं। और चप्पू चलाता मांझी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़कर नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रख।
1: आकाशवाणी मुंबई। कौस्तुभ पटाईत राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। युद्धाचं सावट असलेल्या जगात आध्यात्मिक उन्नतीची गरज इतर कोणत्याही काळापेक्षा अधिक असल्याचं राष्ट्रपतींचं प्रतिपादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पॅरिसमध्ये विवाटेक 2026 या शिखर परिषदेत सहभागी होणार। महाराष्ट्रात विधान

0: चे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. इतर घडामोडी संक्षिप्त स्वरूपात. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थेच्या अर्थात सारथीच्या वतीनं बीड जिल्ह्यातल्या ऐतिहासिक किल्ले धारूर इथं विशेष स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. बीड जिल्हा पोलीस विभागासाठी 4 AI सर्व्हेलन्स व्हेकल्सचं उद्घाटन पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांच्या हस्ते झालं. माजलगाव पाटोदा आणि शिरूर कासार तालुक्यात अन्न आणि औषध प्रशासन विभागानं धाडी टाकून लसीचा साठा नष्ट केला तर रिफाईन सोयाबीन तेलाचा साठा जप्त केला. बीड तालुक्यातल्या हिंगणी खुर्द इथल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पाणन रस्ता अतिक्रमण हटवून मोकळा करण्याचे आदेश तहसीलदारांनी जारी केले. राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त बीड शहर आणि ग्रामीण भागात विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीनं अहिल्यादेवींच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आलं. स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंतीनिमित्त जिल्ह्यातल्या विविध शैक्षणिक संस्था आणि संघटनांनी अभिवादन केलं. माजलगाव तालुक्यातल्या श्री क्षेत्र पुरुषोत्तमपुरी इथं अधिक मासानिमित्त लाखो भाविकांनी भगवान पुरुषोत्तमाचं दर्शन घेतलं. महिनाभर चाललेल्या या यात्रेत दररोज अन्नदान भजन आणि कीर्तनाचे कार्यक्रम पार पडले.
1: बीड जिल्ह्याचं वार्तापत्र आताच आपण ऐकलं. या वार्तापत्राचे लेखक होते रवी उबाळे. जिल्हा वार्तापत्राचा हा कार्यक्रम आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्राच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला.
2: से जुड़ी हुई है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों तो रूपी तूफानों से न डगमगाई हो लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है सही हो गई है. वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज की नाव बनाते थे अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं. क्या बात है, बहुत सुंदर. वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही हैं उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है. वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था. आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था. परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था. इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया. इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला जो बहुत ही रोमांचित रहा. इसी तरह ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला. इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे. बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं. आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना. चलिए सुनते हैं अगला गीत. मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन. आपकी लिस्ट में एक गीत था ना.

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई है, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे। ठीक है, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफर करते हैं, बसों से सफर करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज नौका के द्वारा सफर होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहां गांव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूं फील ज्यादा कर रही हूं, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे जरूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी मथुरा थाईलैंड फुकेट दुबई यूएसए नायगरा फॉल पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। जो भी इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत में हमारे अच्छे कर्म और दूसरों को दी गई खुशी ही हमारे साथ जाती है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे वर्तमान कार्य ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी एक दिन बीत ही जाता है। धैर्य और सकारात्मकता ही जीवन के पहियों को चलाते हैं। मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना निष्ठापूर्वक करना है। जिंदगी का असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि वो अनुभव और सबक होते हैं जो हमें हर अच्छे बुरे दिन से मिलते हैं। ये सच्चाई हमें सिखाती है कि दिखावे और अहंकार में जीने की बजाय वर्तमान में रहकर अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को

दोस्तों, हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती हैं तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई

0: उच्च स्तरीय कार्यक्रमों को नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस

0: जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की।

0: अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ सर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर ए आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है। इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने। स्वर हैं लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम 2 दिल।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

0: के लिए अपनी पुरानी धुनों में प्रस्तुत करने का दायित्व इन्होंने फिर संभाल लिया।
1: जी, और बसंती देवी बिष्ट की गायकी थोड़ी नाक से निकलने वाली आवाज और लय की धीमी गति के लिए जानी जाती है, जो उत्तराखंड की गढ़वाली गायन शैली का विशिष्ट रूप माना जाता है। बसंती देवी बिष्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीऊ बॉर्डरा और फोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीड़ा जादियो और देवारा जारेजू और भी बहुत सारी हैं।
0: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो जरूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताए भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
1: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
0: जी। और बसंती देवी की जो उपलब्धियां हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज्यादा होती है, तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू है वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
0: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम का ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती है, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम निकाल कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता, और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज।
1: बिल्कुल, और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे।
0: हाँ।
1: तो इस तरीके की चीजें भी काफी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता, तो इस तरीके के फ्रॉड काफी होते हैं।
0: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती है ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीजें हम खरीद सकते हैं ना, तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ खराब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं खरीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें खरीदने पड़ते हैं।
1: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे, जैसे पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में उसे वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं, वापस नहीं हो सकता है ये।
0: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं, कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं, और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना चाहिए ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन खरीदारी करते समय

0: उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत उस अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
1: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं। इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज, चमचमाती चीज, जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत सारी चीजें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या खरीदना है, उसकी जरूरत है भी कि नहीं है, इस तरह से करें और पढ़ें पहले पूरी जो चीजें दे रखी हैं कि वो क्या चीज है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
1: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देखने देने के लिए कोई चीज ले रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज गई है, तो वो जब वो शिकायत करते हैं, नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं, तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
0: बिल्कुल, और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले, तो जरूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज्यादा हम जा सकें बाहर वहां से खरीदें।
1: बिल्कुल, देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने ख़रीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है।
1: बिल्कुल
0: सेल देख कर खरीद लिए जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजाकर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो
1: बिल्कुल
0: सोच समझ कर ही।
1: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षाएं यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीज़ों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो एक अंतराल का समय हो गया
0: जी।

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी

0: यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि इनकी पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती है, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
0: बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीजें खराब भी आती हैं,
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं
0: जो इनको
1: कभी पछतावा हो।
0: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूं तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
1: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
0: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
1: और आज ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शब्द कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी की जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन प्रसाद होता है उसकी व्यवस्था की।
0: बिल्कुल, और लंगर का खाना चंचल जी इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
1: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
1: गीत सुन लेते
0: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास, हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
4: बहुत कुछ लिख डाला है भाई
3: जी।
4: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं, और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
3: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
4: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
3: लेकिन मैंने कहा अमूमन की
4: हाँ, ये तो है
3: ना। तो हमारे जो पुरुष होता है कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
4: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल,
3: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
4: अच्छा।
3: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
4: जी। बिल्कुल,
3: चाय की एक बूंद भी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी टिप है,
4: बहुत जरूरी।
3: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वही पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते
4: तो है।
3: तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंद भी गिरी है तो वो ना हो,
4: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं, और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
3: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें जिससे वो काले नहीं पड़ेंगे, और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
4: अरे वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया।

0: तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
1: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी सी छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
1: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
0: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, उसके बाद हम बात करें आगे की।
1: जी
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में अभिन का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं है तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और के बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
0: बहुत बढ़िया, बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन है उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल,
2: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत।

0: भाई, ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप थाने में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता।
1: हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: वो एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा।

0: दीप कहूँ या तारा, तो किसके
1: हाँ
0: लिए
1: जी,
0: सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को मैं बहुत सुनाता हूँ, लोग आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूँ मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5,000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: सर, यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का

0: बड़ा सुख मिलता है। तो बाग
1: जी
0: आपके
1: मैम,
0: पास भी है?
1: चार पांच पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ
1: और
0: चार
1: हम
0: पांच पेड़?
1: जी,
0: भई
1: जी
0: हमने
1: बस
0: तो
1: चार पांच ही।
0: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं मैम इतने पांच छह पेड़।
0: अच्छा, जी बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए,
1: बेफासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत के बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में, ऐसा गाना
1: नहीं
0: क्यों?
1: नहीं मैम, चलो नहीं नहीं पसंद नहीं है मैम
0: अच्छा
1: ऐसा
0: अच्छा
1: कुछ नहीं।
0: जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी, मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस

0: गाड़ी से आते हैं और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
0: जी, मैं बिजनेस करता हूँ, टेल मार्बल और सिटी के सामान बेचता हूँ, जैसे

0: बहुत सारे लोग आते हैं।
1: क्या बात है, गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है। जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
0: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी होती है,
1: 48
0: नॉर्मल सी लगती
1: जी है। तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
0: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे नदियाँ है। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्र की, तरह की नदियाँ हैं जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
1: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
0: आपको सबसे मान
1: वो,
0: जी आपको पता है ये पहलगाम
1: हाँ,
0: कश्मीर में पड़ता,
1: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात यह है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
0: ये साजन फिल्म का नगमा ही देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने? बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है
1: वो। क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास? वो आना जाना रहता ही रहता है।
0: जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहाँ तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल कर।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 60-62 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे,
0: यानी
1: लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया और फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
0: अरे वाल
1: वाले रेडियो,
0: क्या बात है। तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वॉल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वॉल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा अब तो, सुनना तो और ज्यादा होगा क्योंकि पहले, आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से देश भारती आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: और हाँ, मोबाइल,
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
1: दिक्कत होती थी। हाँ, इधर से उधर तक नहीं लगता था।
0: जी, लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ, वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम समा, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का,
0: बिल्कुल
1: हारमोनियम इतने अच्छे लगते।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम। और अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चाहते शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको। और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी हमें देखो इतना साल हो गया छोटे।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेक। हाँ। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने। बस इतनी जी दो लाइन बोलनी थी।
0: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मक्खन घी दही सब कुछ।
0: क्या बात है,
1: है फिर तो।
0: वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है। गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
1: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, भुट्टा हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं का चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए आज मुझे, फिल्म का नाम है पाकीजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
1: जी देखी है जी मैंने।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकीजा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, और आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है और धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है। और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना, वो कश्मीर का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसकी खासियत क्या होती है, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौनी जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी,
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे तीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम तीली पे लगा, मतलब उसमें
0: वो जो डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ, वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, उसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
1: आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
0: बहुत शुक्रिया, सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा हूँ।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक पे, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: जी मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताए धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर, लेकिन
0: हाँ, हाँ,
1: अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है। वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल,
0: आजाद
1: बिल्कुल
0: रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन
1: बिल्कुल
0: होता
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और
0: अरे वाह,
1: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: लगता है।
0: वाह,
1: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है। तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा
1: बिल्कुल
0: सुंदर लगता है ना।
1: बिल्कुल, मोरों के बीच में गांव
0: हाँ
1: में भी रहते
0: हाँ
1: थे
0: हाँ
1: और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में ज्वार है, बाजरी है,
0: ये सब?
1: लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं। और
0: अच्छा,
1: वैसे देखा जाए तो वो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, ज्वार, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है तो।
0: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गौरैया आती है क्योंकि?
1: बिल्कुल आते हैं, तो चक्री का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में,
0: हाँ,
1: मेरा गांव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है,
0: हाँ,
1: अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं क्योंकि?
1: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते है, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे हैं और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये
1: जी
0: जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो
1: जी
0: जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो पक्षी आकर वहाँ

0: पानी पी सकते हैं?
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है, हाँ। जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है?
1: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉर्पोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
0: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारिका बोलते है, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठाकर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
0: तो अब बातचीत करते हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपने बेटे को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10-10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम अब यहाँ महानगर।

0: में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे, हम आम खाने के लिए
0: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने
1: एकदम
0: कहा
1: सही
0: कि
1: बात।
0: आपने के पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़
1: जी
0: पौधा लगाया है,
1: मैं
0: आपकी
1: अपने
0: आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ। जी
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ, लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियाँ होती हैं, जामुन के गुठले होती हैं, आप वहाँ पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहाँ पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंकुर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाले देखेंगे।
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी दीदी नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है?
1: जी दीदी मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और जैसे परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे

0: तावेल लेके जाए, पानी की बोतल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि मैं पानी की वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
1: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
0: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
1: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना अगर आप बागवानी करती हैं तो।
0: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में है तो घर में जैसे की गाय है भैंस है तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे की खन की मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं।
1: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
0: हमारे तरफ तो धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
1: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
0: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
1: हुआ करता था
0: जब दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते है ना उस टाइप का था,
1: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
0: जी जी
1: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
0: जी जी जी मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना। मैं

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 2867-0288 और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
3: रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह

प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः

0: परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

चाहे स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से

0: की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नमस्कार। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाजों में परिंदा फिल्म से ये गाना, खुर्शीद हलोरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। कुमार सानू की आवाज में जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव बर्मा।

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे हैं तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म से ये गाना, सलीम बिजनौरी के बोल, डब्बू मलिक का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: इसी के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कहने गए, खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दांस

मोहन सिंह का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांसिंग के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। डांसिंग खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग की प्रतिभा

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दान सिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

0: चुराया है।
1: यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था, वो फ्लैट में डांसिंग के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। डांसिंग ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी, और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है, तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माय लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई। सभी ने उसकी हिम्मत पर भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: और सुबह हो
1: वाह वाह वाह।

चार हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार

0: जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ये हो पाया है?
2: पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहाँ पर 50,000 करोड़ SARDP नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूँ तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूँ, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट।

0: योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
1: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज़्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पज़ से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सेलेक्शन, एनवायरनमेंटल सेफगार्ड और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें।
0: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, ज़मीन पर उतर कर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीज़ों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
1: कई राज्यों में इनफैक्ट ऑल दी एट अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इंप्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काई वॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है और जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-2-3 में कहीं ना कहीं इसका लेप होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। दो प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है। जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है, उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5 स्टार हो या 3 स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खास तौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक बृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
0: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
1: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल

0: सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बनेगा। इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर

0: भी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें, बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएँ और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेज़ी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और ख़ास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, ख़ास तौर पे लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज़ तक पहुँचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहाँ पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नज़रिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नज़रिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में, माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर इस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज़ है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स are integrated into India's growth story and when they do